अरे आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, गाना बजा दूं।

मेरी फिर उसकी आंखों से जमली एक बारी दो बारी फिर निकली हसी एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास ते मेनू नी पता सी गिलास च की बट हौली हौली लक नुक्कवा के नचदे लगे सो सेक्सी।

जैसे हिलती है वैसे मत हिलाकर लगे मुझे रहेगी रब से मिलाकर बारी तेरी हार देना चंचला फर माने तुझे पड़ा कि ये क्या खिलाकर

और क्या रंग रूप है क्या चाल ढाल है और क्या रंग रूप है क्या चाल ढाल है ये

0: गाना चला तो बिजवाले बाबू मेरा गाना चला तो बिजवाले बाबू मेरा गाना चला तो गाना चला तो गाना चला तो
1: अरे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं बजा दूं आजा बेबी आजा बजा दूं आजा बेबी आजा बजा दूं गाना बजा दूं।

दिल तेरा लेके ही तो लेके बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना करा दी तेरी ना

जैसे हिलती है वैसे मत हिलाकर लगे मुझे रहेगी रब से मिलाकर बारी तेरी हार देना चंचला फर माने तुझे बड़ा किया क्या खिलाकर

और क्या रंग रूप है क्या चाल ढाल है और क्या रंग रूप है क्या चाल ढाल है।